राग माली घोड़ा। राग माली घोड़ा भारतीय संगीत दे अति अलप प्रसिद्ध जा पर चलित रागां दे वर्ग दा एक कठिन राग है। भारतीय संगीत दे प्राचीन जा मध्यकालीन ग्रंथां इत्थों तक कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अंत विच अंकत रागमाला विच इस दा जिक्र नहीं आया। एक मत है कि राग मुसलमाना दी काढ है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच इस राग विच गुरु रामदास जी दे 6 शब्द, गुरु अर्जन देव जी दे 8 अते भगत नामदेव जी दे 3 शब्द उपलब्ध हैं। माली घोड़ा दा सुभा खुशी उपजाउणा अते काम क्रोध आदि दी मार तों बचण लई तैयार करना है। परमेश्वर दी दित्ती हर चीज नूं वर्तन दा वल आ जाएगा जे नाम दी टेक रखांगे अते खिन खिन राम नाम नूं ही नमस्कार करांगे। राग माली घोड़ा दे गौण स्वरूप विच ऋषभ अते धैवत कोमल मध्यम तीबर बाकी स्वर शुद्ध लगदे हन। इस दा वादी स्वर ऋषभ अते संवादी पंचम है। गायन समा है दिन दा 4 पहर। गुरु अर्जन देव जी दे रचित 2 शब्द, पहला ऐसो सहाई हर को नाम अते राम नाम को नमस्कार गायन कर रहे हैं भाई प्रतिपाल सिंह जी इंदौर वाले अते भाई नरेंद्र सिंह जी। पहला शब्द सर्वन करो, ऐसो सहाई हर को

मैं ते परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नु मिलन दी जो है वो पाई है किस तरह साध संगत दे द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिसके द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलिया पंक्तियां दे विच भगत गुरदास जी ये दसनगे कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

0: कहते हैं मैं परम गति पाले ही हूं। सब तो उच्ची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पाले ही है। भक्त रविदास जी दस दहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई। बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिया नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल इकमिक हैं अते ताकीद करते हैं कि इंसान ए जिज्ञासु ए सीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा हो दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं कहते हैं
1: संत जना के संग मिल बारे
0: कमले इधर उधर ना फिर

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाहते हैं कि जो साधुओं का संघ है वह सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्के हैं, जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक साधुओं दे नाल अपनी मित्रता पाई है, कहिंदे हन ए जड़े कच्चे हन इन्होंने ते इत्थे ही छड़ जाना है। कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे, तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे, साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं। इस करके साध संगत नालों वड़ा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का। इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं। प्रेम नाल गाओ।

प्राण नाथ कवन भगत ते केड़ी भक्ति दे द्वारा वाहिगुरु मिलता है, फिर अपना खुद का जवाब दिता कि मैनू मिलिया है साध संगत दे द्वारा। पर साध संगत दे द्वारा भी किवें मिलिया है, ऐ उस तो भी ज्यादा जरूरी है जानना कि साध संगत दे द्वारा किवें मिलिया है। भगत जी ने साध संगत किवें कीती है, भगत जी दी साध संगत अते साडी साध संगत करन दे विच अंतर की है, की फर्क है। असीं गुरुद्वारे आने हर इतवार आने हैं, जदों भी वक्त मिलता आने हैं, और कितने कितने साल आंदे रहने, सोचते तो असी भी है ना भी असी साध संगत करते हैं, पर असी अपने जीवन दे विच कोई इस तरह की गल नहीं कह सकते कि मैं साध संगत इतने साल की है और मैनू परम गति मिल गई। भगत रविदास जी ने तो की साध संगत, तो उदा रिजल्ट सामने है। वो आप आख रहे हैं कि आई हैव अटेंड द हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड परम गति, लेकिन साडे विचों ईमानदारी दे नाल असीं अपने अंदर देख के अपने अंदरों अपनी आवाज नूं सुनिए, इज देयर एनी वॉयस विच सेज दैट आई हैव फाउंड समथिंग। मैटर ऑफ फैक्ट जदों लोग कई कई सालों तो बाद गुरुद्वारे दे विच आंदे रहिंदे हन, जांदे रहिंदे हन, एंड फाइनली दे से कि ना सानू कुछ समझ आंदा है ना साडे बच्चों नूं कुछ समझ आंदा है, कुछ मिलता तेन, इज इट ट्रू और नॉट, सच है या नहीं। सानू ओ परम गति, ओ आत्मक अवस्था वाहिगुरु का मिलन क्यों नहीं हुंदा, जबकि असी भी साध संगत करते हैं, अपने वालों तो करते हैं, अपने वालों तो आने ही हैं, पर कोई लाइफ दे विच ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं होती, कोई लाइफ दे विच तब्दीली क्यों नहीं आती, बदलाहट क्यों नहीं आती। साडी साध संगत करन दे विच अते भगत रविदास जी की साध संगत करन दे विच अंतर की है, फर्क की है, डिफरेंस की है। आओ भगत रविदास जी कहते हैं साध साध संगत जदों मैं कीती, साधु की संगत जदों मैं कीती, साधु महापुरुष के पास जदों मैं आया, दैन देर वॉज ए बिग कॉन्ट्रास्ट। साधु नूं मैं देखिया, अपने आप नूं देखिया, जिंदगी दे विच जमीन आसमान दा अंतर नजर आया। साधु टिकाओ च देखिया, मैं अपने आप नूं पटकण च देखिया। साधु शांत देखिया, मैं अपने आप नूं अशांत देखिया। साधु तृप्त है, कंटेंटेड है, लेकिन मेरे अंदर खाशा ही खाशा हैं। साधु नूं कोई भी मिलता है, साधु दा एक समान प्यार हरेक नूं मिलता है, मैं जदों मिलता हां हरेक नूं इक्को ही तरह नहीं मिलता, किसे नूं प्यार ना मिलता हां, किसे नूं फर्जी तौर ते ही मिलता हां, किसे नूं मिलना ही नहीं चाहुंदा। पर साधु दा दिल इतना ओपन है और उस दे विचों निकलता ही सिर्फ प्यार है, ऐसा कॉन्ट्रास्ट देख के साधु दे पास बैठिया पवित्रता ही पवित्रता है, कोई मैला ख्याल ही नहीं आता। साधु की जिंदगी च मैं एक मर्यादा, एक लयबद्धता, एक जीवन का डिसिप्लिन देखता हूं। साधु दे जीवन दे विच उठन च, बैठन च, बोलन च, चलन च, पहनन च, हर गल दे विच एक ग्रेस है, लेकिन अपने जीवन दे विच मैं देखता हां ते जीवन बेटगा है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई ग्रेस नहीं। कहिंदे इतना वड्डा कॉन्ट्रास्ट देखिया ते मैं पाया कि मैं किथे हां, मेरी अवस्था की है और साधु की अवस्था की है। मैनू सामने एक लाइफ मॉडल नजर आया, एक मिरर नजर आया, जिस दे विच मैं अपने आप नू रिफ्लैक्ट कर सकिया। ते जदों मैं साधु दे अंदर अपने आप नू रिफ्लैक्ट कीता तो कहिंदे पहली इनसाइट, फर्स्ट इनसाइट, फर्स्ट अवेयरनेस विच केम टू मी, वो ए सी मैले कपड़े कहां लौ धो। पहली अवेयरनेस ए आई कि मैनू अपने अंदर मैल नजर आई कि मेरा

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस के नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लीए, इसनू वरत लीए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसी नाल नाराज होने हाँ, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हाँ, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन नू असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वह इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हूं। उसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नू ही देखना है। बाणी दे विच एक साड़ी जो अवस्था है, साड़ी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए। जड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंध जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी दे शुभ गुण नू जदों देखते हाँ, तो नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहिंदे सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आखिया गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहिंदे ओ सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत, कहिंदे मैं ये सारे दे सारे फौरन पाड़ सकते, डिले नहीं की। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठी ही गई हाट्यो। वह कहिंदे जिहड़ी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वह उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं, पहला उसनू सुनो फिर उसका असी अर्थ करांगे।

I'm not sure. But, तेरी बख्शिश सुख जाए जिसे मैं नहीं सिखाता है जिससे तेरापन है तेरा गुरु भी तेरा लिखने गुरु भी है मेरा गुरु है तो तेरा कदे

कौन ग्रस्ता मिले राबे दे विचो गौड़ी गुआरे दी सतगुरु जी ने इस राग को गुरु ग्रंथ साहिब दे विच तीजा स्थान दिता है। ए भी बहुत वड्डा राग है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच गौड़ी गुआरे दी अते मारू दो राग सतगुरु जी विच बहुत वड्डे बहुत बाणी विचार में किते जिहड़ा राग है विच आओ ए शाम दा राग है गौड़ी गुआरे दी जब वो इस शब्द नो मेरे जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल देश संदरिया सतगुरु जी ने गोड़ी द्वारे विच उचार

सेवा प्रवान करें संतन जो भी आपकी दुनिया भी कम मका जनों जा की सूरत ने किस वेले करता है गुरु दरबार की विशाद भी बनी है अते हम आप इन अमृत ने कीर्तन रागा ने कुछ गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा अनुसार गुरु अर्जन साहब की मर्यादा अनुसार सर्वन कीता है स्वतंत्रता दे आओ अंत दे विच सर्वत माए भाई जिथे गुरु चरणा च बैठे हो छोरिया अड़के ही अरदास बेनती जो दिन करनी है सतगुरु दास अगे हे काल पुरख सर्व शक्तिमान परम पिता परमेश्वर कृपा करो साडे छोरिया विच अपने पवित्र नाम की खैर पाओ आओ जपो सारे लवाओ हाजरिया कोई उस ना फायदा जाए।

सिख लोक सुनावे। कंत न पुछे वातुड़ी सुहाग दणावे। चूहा खड ना मावई लग छज वलावे। मंत न होए अठुहियां हथ सप्पी पावे। सरसन ने आगास नो फिर मथे आवे। तुही सराई जरदरू बेमुख पछतावे। तुही

रतन मणि गल बांध रहे क्यों कीन न जाने, रतन मणि गल बांध रहे क्यों कीम न जाने, करछी साओ न समले भोजन रस खाने, डड्डू चिकड़ वास है कमले ना सियाने, नाप कठूरी मिर्ग दे फिरदा हैराने, गुजर गोड़स वेच के खलसूड़ी आने।

खाए छुट्टड़ होई। मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई। पीड़ लई रस गन्नो छिलछू है न कोई। रंग मजिठो निकले अड लहे न सोई। वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई। काया हंस विछुन्या तिसको न सथोई। बेमुख सुके रुख ज्यों बेमुख सुके रुख ज्यों

तय हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। यूं चक चुंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़िया बने न विच समावे।

मुंह कालख भरी है वड़िए कज्जल कोठड़ी मुंह कालख भरी है कल्लर खेती बीजिए केहो काज न सरिए टूटी पिंगे पिंगिए पैटोए मरिए कन्ना फड़ मन तारुआ क्यों दुत्तर तरिए अगलाए मंदर समय तिस नाल न

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको होत, पीर मिट जाए लेक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको होत, पीर मिट जाए लेक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत, नांगो तो न होए तो थेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास त्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

कुत्ता राज बहालिए फिर चक्की चट्टे। कुत्ता राज बहालिए फिर चक्की चट्टे। सप्पे दूध प्यालिए व्यो मुखो सुटे। सप्पे दूध प्यालिए व्यो मुखो सटे। पत्थर पानी रखिए मन हठ ना घटे।

त्यों निंदक पर निंदों हठ मूल न हटे अपन हथी अपनी जड़ आप उपटे अपन हथी।

ये सिर छार उड़ावे, तुम्हें अमृत सिंजिए उड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे, निंदक नाम भी होने सत्संग ना पाए, मूर्ख सच न जाननी।

कर दे परवासा। थल विच तपन पठिया क्यों लह प्यासा, सोने राज कमाई है कर भोग बिलासा।

महाराज जी वाणी चाकते हैं, चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागी, चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे, जे को जन्म मरण ते डरे, सात जना की सरनी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक तांके बल बल जासा। बाबा जी बाणी च आखदे हन नाव रूप भयो साध संग, नाव रूप भयो साध संग, कहिंदे जिहड़ा साध संगत है ना, ये समझो एक किश्ती दी तरह है कि तुसी एक किश्ती च सवार हो गए हो, नाव मैंने किश्ती, अते जो साध संगत बैठ गया समझ लो किश्ती दे विच बैठ गया है, जो किश्ती उसनू इस जन्म मरण दे पव सागर दे विचों पार कर दे। नाव रूप पयो साध संग, तो इस शब्द दे विच गुरु बाबा जी ने दस्या है कि साधु सानू की रस्ता दसदे हन, की मार्ग दसदे हन। बहुत ही सिंपल जवाब देता है, बहुत गौर नाल ध्यान नाल सुनो, मन नु जोड़ के, हर मार्ग साधु दसिया, साधु ने ए मार्ग दसिया कि जपिए गुरमंत। साधु कहिंदा है गुरु मंत्र जपो, गुरु मंत्र दा जाप करो, साधु ये मार्ग दसते हैं। हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत, सिंपल गल, आसान गल। साधु ने ये नहीं क्या मेरी पूजा करो, ये नहीं क्या कोई मेरा मंत्र जपो, साधु पूर्ण साधु कदे भी ऐसा नहीं करे, वो कहेगा गुरु दा मंत्र जपो, गुरु दे नाल जुड़ेगा, प्रिपेयर करेगा, समझाएगा, कड़ेगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता जिज्ञासु ओह गुरु दे मंत्र दे नाल जोड़ सके, गुरु दे नाल जोड़ सके। इस दे विच नुक्ता समझन वाला है, साधु ने ए नहीं आख्या कि मेरा मंत्र जपो, कहिंदे गुरु दा मंत्र जपो। साध साधु हर मार्ग साधु दसिया कि जपिए गुरमंत। हुण इत्थे एक विचार है थोड़ी जी जो समझण वाली है, गुरु मंत्र ओही जपेगा जिसनू गुरु मंत्र मिलिया है, जिसनू गुरु मंत्र मिलिया नहीं है वो गुरु मंत्र जपण दा अधिकारी नहीं हुंदा, उसनू अधिकार नहीं हुंदा, उस दे गुरमंत्र जपे दी कमाई दा जिम्मेवार गुरु नहीं हुंदा जिसने गुरु तो गुरमंत्र नहीं लिया। अते महाराज जी आखदे हन जो इंसान जीवन दे विच गुरमंत्र प्राणी, जो भी प्राणी गुरमंत्र तो हीणा है, गुरमंत्र तो सखणा है, कहिंदे गुरमंत्र हीन जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, कहिंदा कहिंदे हन ओदा जन्म त्रिकार है, लहनत है उस दे जन्म दे जिसने हाले गुरमंत्र नहीं लिया, ते प्रश्न है ओदा जन्म प्रिष्ट है, विकार है। गुरमंत्र हीन जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, अगे कहिंदे कुकर है सूकर है गर्दभ है सर्पन है काका तुल खल है, कहिंदे ओ इंसान एना जूना दे विच पवेगा, कुकर है सूकर है गर्दभ है सर्पन है काका है, कुकर है मैंने कुत्ते, सूकर है मैंने सूर, गर्दभ है मैंने गधे, सर्प ने सप कां, कहिंदे ओ इना जूना दे विच इंसान जाएगा जिस इंसान ने गुरु दा मंत्र नहीं लिया, गुरमंत्र तो खाली है, गुरमंत्र तो सखना,
ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪੋ। ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਏ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਜਿਤਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਉਹ ਤਰ ਜਾਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਮਾਂ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਉਸਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਮਾਰਗ ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ ਜਪੀਏ ਗੁਰਮੰਤ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ,

0: 3G のタブレットを使用したそれともプランに始める間サンケットのプラージパンハンパスレディグラン इतने पैसे पाए कर शुद्ध विश्व हो पाए बहुत ही सुविधाजी तो अपने हर तुरंत ये जोश बहुत दिया हाजिर हाल पर अच्छा कितन हो गया सुविधा कोशिश करेगा कि आज का वही आनंद बनाए रखे मैं हाजिर वाला हाँ आज्ञा देव के दास
1: You are listening to SikhNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

तू क्यों व्यर्थ है? इसने प्रथाए नौमे पास यदि निविकथन कीता, हर की गत नाही कौ जाने, जोगी जति तपी पछहारी अर बहलोक सियाने। तू बेअंत को विरला जाने, को विरला जाने, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी, आपे देखन हारा नाना रूप, तरी बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत, अंत न पावत देव सब, मुन इंद्र महा शिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ता का दरबारा,

आओ गुरु के सिखो। ओ मेरे दुष्ट दमन पिता साहिब कलगीधर पातशाह निरंकार दे चरणा नाल जुड़े हन, आपां भी थोड़ा समा मेरे पातशाह दे चरणा नाल जुड़ के इस शब्द नूं श्रवण कीजिए। मैनूं याद है कैलगरी विखे ये शब्द दास पढ़ रहा सी, आ गोरे सिख जिन्हां ते पातशाह दी बहुत मेहर है, बहुत कृपा है, आ नवे सिख सज रहे भावे ओनू समझ नहीं सी आ रही, सुन रहा सी बीबी सी, उसने उठ के कहा भावे मैनू अर्थ समझ विच नहीं आए पर मेरा मन कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहिब जी दे चरणा नाल जुड़ गया। उन्हें आख्या मैं नितनेम नाल इसनू टेप ते सुन दी हां और बड़ा ही मैं जिवें एक शब्द सुन के हेमकुंड साहिब ते पहुंच जानी हां। तो गुरु की साध संगत आओ आपां वी उसे ध्यान नाल

कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड, ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। वट एवर यू डिजायर यू शैल रिसीव दैट रिवॉर्ड, एंड यू शैल नॉट बी अफ्लिक्टेड बाय पेन एनी लॉन्गर। काचे भांडे साज निवाजे, अंतर ज्योत समाई। ही क्रिएट्स एंड अडॉन्स द अर्थन वेसल्स, ही इन्फ्यूजेस हिज लाइट विद इन देम। जैसा लिखत लिखिया तुर करता है, हम तैसी किरत कमाई। एज इज द डेस्टिनी प्री ऑर्डेन्ड बाय द क्रिएटर, सो आर द डीड्स वी डू। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना। ही बिलीव्स द माइंड एंड बॉडी आर ऑल हिज ओन, दैट इज द कॉज ऑफ हिज कमिंग एंड गोइंग। जिन दिया सो चित ना आवे, मोहे अंत लुपटाना। ही डज नॉट थिंक ऑफ द वन हु गेव दीज थिंग्स, ही इज ब्लाइंड एंड टैंगल्ड इन इमोशनल अटैचमेंट्स। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपार। One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. Bhagat kari har ke gun gaama, Nanak das tumhara. Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. Kirpa karo deen ke date, mera gun ab gun na vichar.